0: And glorify the praises of your Lord before the rising of the sun and before its setting. Surah Qaf 50, Ayah 39. Reciting Adhkar and remembering Allah is one of the most effective ways to defeat Shaitan. It is also an effective way to strengthen your Iman. The morning Adhkar will be playing every day. Please tune in.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM.
1: Inspire 105.1 FM. I have

उसका करम है। तो मोमिन अपने कामों का क्रेडिट खुद नहीं लेता, बल्कि फौरन उस हस्ती को देता है जिसकी तौफीक से ये काम पूरा होता है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसके फजल से अच्छे काम अंजाम पाते। और अगर इसके बरक्स मामला होता, कोई नुकसान हो जाता, कोई तकलीफ होती, क्योंकि दोनों ही हालतें होती है ना, कभी इंसान को खुशखबरी मिलती है और कभी कोई जिंदगी में ऐसी चीजें भी होने लगती हैं जो मर्जी के खिलाफ है, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, उस वक्त भी बंदा अपने रब से नाराज नहीं होता। वो क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी अल्लाह की तारीफ करता हूं, अला कुल्ल हाल हर हाल में, अनकंडीशनल अनकंडीशनल, भले मुझको कुछ मिले या ना मिले, कोई काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, मैं अपने रब से नाराज नहीं हूं, मैं फिर भी उसकी तारीफ करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल। जब ऐसी हालत में इंसान अल्लाह की तारीफ के काबिल होता है तो फिर उसका रब उससे कितना राजी हो सकता है, बहुत राजी। सहाबा कराम का यही तरीका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते उन्होंने देखा। क्यों तकलीफ में क्यों अल्लाह की तारीफ और क्यों अल्लाह का शुक्र और नुकसान पर क्यों शुक्र? बाज़ोकात एक चीज हम नापसंद करते हैं और वही हमारे हक में बेहतर होती है। असा अन तकरहु शैअन वयजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, हो सकता है कि एक चीज तुम्हें सख्त नापसंद हो और अल्लाह उसी में बहुत बड़ी खैर तुम्हारे लिए रखे। वो एक मुहावरा ना अंग्रेजी कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी ये भी एक ब्लेसिंग है लेकिन तरीका और है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर कभी भी जुल्म नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, किसकी हम, कौन है वो, रब्बुल आलमीन। रब कौन होता है, मालिक, खालिक, मुदब्बिर, याद रहेगा ना, खालिक, मालिक, मुदब्बिर, किसका, मेरा और आपका या किसी और चीज का, अल आलमीन तमाम जहानों का, सारी कायनात का। आलमीन किसकी जमा है, आलम की, आलमीन आलम की जमा है, और आलम किससे है, अलम से, और अलम किसको कहते हैं, निशानी को। तो क्या कुछ निशानी है, अल्लाह के सिवा हर चीज क्या है, आलम है, अलम है, ठीक है। यानी अल्लाह खालिक है, रब है, और बाकी क्या है, आलमीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ किसके लिए होनी चाहिए, रब के लिए या आलमीन के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए। अच्छा हम क्या करते हैं, उलट ऐसे होता ना, हर चीज की तारीफ करते रहते हैं और जिसने सब कुछ दिया उसको भूल जाते हैं। क्या यही शुक्र है, यही हम्द है? नहीं, ये नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करना, तारीफ कर सकते हैं, वो अल्लाह की मुख्तलिफ निशानियों को देख कर अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनमें गौर व फिक्र कर सकते हैं ना, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को देखकर किसकी याद आनी चाहिए, रब की याद आनी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत दी थी, इतनी बड़ी सल्तनत थी और इतना कुछ था उनके पास और इतनी चीजों का इख्तियार था उनके पास कि उसके बाद ऐसी हुकूमत किसी और को नहीं मिली। वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहद मिन बादी, उन्होंने कहा था अल्लाह ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद किसी के पास ना हो, और बाकी उनकी दुआ कबूल हो गई। उसकी तफसील आगे कुरान मजीद में आएगी। तो एक मौके पर जंगी घोड़े उनके सामने लाए गए तो उनको देखकर उनका दिल खुश हो गया। वैसे भी घोड़ा ऐसी चीज है, एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है जिसे देख के आपके अंदर एक खास किस्म का वलवला उठता है। गाय को देखकर फीलिंग और होती, भैंस को कुछ और, बकरी को देख के कुछ और, बिल्ली को कुछ और, चूहे को कुछ और, कॉकरोच को कुछ और, तो घोड़े को देखकर कुछ और तरह की फीलिंग होती। इतने

0: पर 10 घोड़े थे और एक नहीं कतार, बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के आला तरीन घोड़े। तो उनको देख के दिल में खुशी समाई, मोहब्बत हुई। तो क्या कहने लगे, इन्नी अहबबतु हुब्बल खैरी अन ज़िक्री रब्बी, मैंने माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की। तो बंदा मोमिन को दुनिया की किसी भी चीज से जो मोहब्बत होती है उसकी भी बुनियाद क्या होती है, अल्लाह की मोहब्बत। एक तो कुरान मजीद में बंदा मोमिन की शान ये बताई गई है कि वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़ के होती, हर चीज से ज्यादा वो महबूब होता है। लेकिन उसके बाद किसी भी चीज से जो मोहब्बत होती, खा वो माल से है, खा वो औलाद से है, खा वो दोस्तों से है, खा किसी इंसान से, कुछ भी है, उसकी भी बुनियाद क्या होती है। चाहे एक फूल को देखकर आप कहते हैं मुझे फूल बहुत पसंद है, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप दिन में पता नहीं कितनी दफा कहते हैं आई लव दिस आई लव दैट, ये कोई बुरा नहीं है। लेकिन बंदा मोमिन की मोहब्बत और नफरत और हर चीज क्या होती है, किसके लिए होती है, अपने रब के लिए होती है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम और तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर FM।
2: कमिंग अप नेक्स्ट इज बोल के लव आजाद है तेरे विद आजाद।
3: कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM। इंस्पायर FM।
4: डिड यू नो sound travels about 4 times faster in water than it does in air.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
8: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
10: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
11: Every Friday at 11 a.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
13: بچپن سے سنتے آئے ہیں, یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کرنا, سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
15: Ji.
13: Koi question aapke dil aur dimag mein abhi aaya ho?
15: Sir, main abhi jaise aap explain kar rahe the. So, usme aapko lagta hai se depends on the person as well ke wo ان سب چیزوں میں سے کیا چیز ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو کیسے سمجھتا ہے.
13: جی بالکل, انسان کا جو مٹیریل ہوتا ہے, انسان جس مٹی سے بنا ہے اس سے اثر پڑتا ہے, آپ کے جو جینیٹکس ہوتے ہیں اس سے اثر پڑتا ہے, آپ کتنا سوچ اور سمجھ رکھنے والے ہیں, کیونکہ ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتا ہے. کئی لوگوں کے لیے آپ دنیا زمین آسمان بھی ایک کر دیں, انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. ان کو اگر آپ $100 دیں روز کے اور اس کے بعد آپ دو بھی کر دیں تو انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان تمام چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جو آپ کے لیے نہیں ہوتے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اسی کو فلسفی کی زبان میں میں سمپل کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو یاد رہے اسے کہتا ہوں, آپ ایکسپیرینس دیں گے اور اس ایکسپیرینس کے بعد گھوڑے اور گدھے علیحدہ ہو جائیں گے. تو اس طرح ہر بندہ ڈفرینٹ ہے, پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے یا نہیں. وہ آپ کے لیے نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے, بس وہ آپ کے لیے نہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ, یہ ہمیشہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا, لوگ جنرلی ہمیشہ گمان کو اچھا کریں. گمان اچھا کیا کہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں, بس کبھی کبھی آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو ان کو جب آپ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کو ان جیسے مل جاتے ہیں, آپ کو آپ جیسے مل جاتے ہیں, ٹائم, انرجی, ایموشن, یہ ساری چیزیں بچ جاتی ہیں اور آپ اس میں بہتر اب کام کر سکتے ہیں, کوئی یا بہتر چیز ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے لیے. آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا, اور دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا وقت اور آپ کی انرجی ہے, کیونکہ وہ واپس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, ہولڈ رکھیے گا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, مہربانی جی, ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی بڑے سیانے, انہوں نے صحیح جگہ پہ کال کر لیے اور آج وہ غور سے سن رہے تھے. آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسا میں نے کہا دوبارہ نہیں ایکسپلین کرنا پڑا. جی
16: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام,
16: بارش فرمایا.
13: ہاں جی بالکل, آپ کے
16: بارے شکر ہے اللہ تعالیٰ.
13: اچھا, مزے کی بات یہ ہے, یہ جو میں کلپس بناتا ہوں اور میں بھیج دیتا ہوں, میں نے تو یہ کلپ ہو سکتا ہے مہینہ دو مہینے پہلے ریکارڈ کیا ہو. ہر آدمی جس کے اندر کوئی نہ کوئی کاڑا پن ہوتا ہے نا, یا جس بندے کو لگتا ہے مجھے کہہ رہے ہیں, وہ مجھے میسج لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ سر یہ آپ نے مجھے کہا ہے, بھائی یہ آپ نے مجھے کہا ہے, یہ آپ نے مجھے کہا ہے. کئی لوگ جن کے اندر, تو میں انہیں کہتا ہوں میں نے تو آف کورس آپ کو نہیں کہا, میں نے پتہ نہیں یہ کب کہا تھا, کیا کوسچن ہوا ہوگا, کیا بات ہوئی ہوگی, تو یہ بات میں نے کہی ہوگی. لیکن اگر آپ کو یہ لگی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ ہیں. اور اگر دیکھیں
16: مجھے لگتی نہیں اسے, میں آگے سے فارورڈ بھی کرتی ہوں, جہاں جہاں وہ جاتی ہے وہاں سے آپ کے لیے اور دعائیں آتی ہیں. اچھا میں زیادہ ٹائم آپ
13: کو بدعائیں بھی آتی ہوں گی کہ بھائی یہ ہر بات جو ہمارے اندر ہے یہ ہمیں کھول کے بتا دیتا ہے سامنے, کیا فائدہ ہے. جی
16: نہیں وہ دعائیں آتی ہیں, میں آپ کو زیادہ ہولڈ نہیں کرواؤں گی, میں دوبارہ کال کر لوں گی کیونکہ مجھے وہ دوسری باتیں بھی سننی ہیں. آپ کو مبارکباد دینی تھی کیونکہ آپ کی جو آئی تھنک اس وقت ہولڈ میں ہیں ساتھ میں, ہمیں آپ کی اور ان کی کنورسیشن زیادہ پسند ہے.
13: اچھا اس کا مطلب ہے آپ نے اچھا ان کو بتا دیا, ورنہ ہر بندہ کچھ نہیں ہے تو میرا کنٹریبیوشن تو اتنا اچھا نہیں ہوتا. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ, آپ کے کنگریچولیشنز پہنچ گئی اور ان تک بھی آواز پہنچ گئی. جی سجیرہ جی
17: السلام علیکم آزاد والا.
13: وعلیکم السلام. آج تو آپ نے ہینڈز آن سن لیا, لوگ آپ کی اور ہماری کانورسیشن سننا چاہتے ہیں ایز اے کو ہوسٹ.
17: وہی زار قربان شام آزاد والا, اتنے پیارے پیارے آپ کے آپ کی آڈینس اتنی پیاری ہے ماشاء اللہ سے, اللہ ان کو ان کی زندگیوں کو اللہ پاک نور سے بھر دے.
13: بالکل ضرور. اور دیکھیں زہرا جی پہلے ممتا جی ہوتی تھیں, پھر زہرا وہ لمبی عرصے تک ڈیوٹی کرتی رہیں فرسٹ کالر کی, پھر زہرا جی اویلیبل تھیں وہ کرتی رہیں, پھر وہ مصروف ہو گئیں, ممتا جی آئیں وہ اویلیبل تھیں مصروف ہو گئیں, پھر اس کے بعد آج کل افشاں جی نے یہ رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے کو ہوسٹنگ کی, شروع میں شو کو شروع کرنے کی. لوگ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہوتا ہے لوگ آئیں گے, اگر کسی دن لوگ نہ آئے تو میں نے ایک بات یہ کہ میں کیسے مان جاؤں کہ کوئی نہیں آئے گا. ایک بات, جب ہمیشہ آتے ہیں رب کی مہربانی ہوتی ہے, جس دن کوئی نہیں آئے گا اس دن کوئی مقصد مصلحت ہوگی اور اس دن ہم اپنی بات کر لیں گے اور گھنٹوں کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے. تو لوگ آئیں گے ان کے دل میں جیسے جیسے جس کا جو جب دل چاہے گا وہ جب آئے گا. زور زبردستی کا کام نہیں ہے یہ, زور زبردستی تو ہم ٹیم والوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ نہیں پورے کرتے. ابھی تک ہم اس جگہ پر ہی نہیں پہنچے کہ وہ رسپانسبلٹی خود فیل کر کے خود چیزیں کر سکیں, اور کمٹمنٹس اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے بھی لوگ اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. حکم.
17: بس آزاد اللہ آپ کو ریڈیو آزاد کی سالگرہ بہت بہت بہت مبارک ہو, اور میرے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی یہ پانچواں سال ہے, میں تو اتنی ابھی جوائن کی ہے لیکن ان پانچ سالوں میں تقریبا بہت زیادہ چینج میری زندگی میں آیا, اور آئی ایم سو گریٹفل فار ایوری تھنگ یو ڈو فار اس.
13: کوشش, میرا کام ہے کوشش کرنا, عائشہ جی کا کام ہے اس پلیٹ فارم کو چلاتے رہنا, ہماری ٹیم کا کام ہے اس کو سپورٹ کرتے رہنا, لسنرس کا کام ہے اپنی کنٹریبیوشن دیتے رہنا اور گاہے گاہے اکنالجمنٹ کرتے رہنا, اسپانسرز کا پروڈیوسرز کا اور ایڈورٹائزرز کا کام ہے اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہنا. ہم سب نے جو جو ڈالا ہے اس کی وجہ سے ریڈیو آزاد یہاں پہنچا, ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اور ڈالنے کی کیپیسٹی ہے ہم سب میں, مجھ میں باقی لوگوں میں, وہ اور ڈالیں گے اور باقی لوگ اس کا اور اچھا رسپانس دیں گے. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر سال کم از کم کوئی بھی چیز 10-15% ہر سال اس کے اندر انکریز ہونا چاہیے. جیسے آپ نے اس میں دیکھا یہ جو فنڈ ریزر ہم کرتے ہیں, تین سال پہلے $1,02,000 تھے, پھر اس کے بعد اگلے سال ہم نے $1,25,000 ریز کیے, اس سال $1,50,000 آپ کو بتائے لیکن بیہائنڈ دا سین اس سے بھی زیادہ ہوئے. تو اس طرح جیسے پروگرس ہوتی رہے گی, نتھنگ موٹیویٹس یو مور دین ریزلٹس. تو ریزلٹس جب آتے رہیں گے اور جب ہم اسٹیگنیٹ, دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کیسے چلے گا, ایک ریزلٹس آ رہے ہیں اور دوسرا آپ ایگزاسٹ نہیں ہو رہے, اسٹریس نہیں بڑھ رہا. اگر ایگزاسٹ ہو رہے ہیں اسٹریس بڑھ رہا ہے اور ریزلٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن سسٹم اور ہم اور زیادہ اس کو بہتر کریں اور اس کو مضبوط کریں تاکہ وداؤٹ اسٹریس یہ سارے سسٹم آئیں. کیونکہ خدا کا قانون, اور یہ کہاں سے سیکھا ہم نے, رب سے سیکھا. یونیورس ہزاروں سالوں سے لاکھوں سالوں سے چل رہی ہے, اربوں سالوں کی اس کی ایج ہو چکی, آگے بھی اربوں سالوں تک تیار ہے. جب تک ہم کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے اور ہم اس کو ختم نہ کر دیں دنیا کو اپنی حرکتوں سے, تب تک جو ہے وہ کام بڑا لمبا ہے اور وہ بغیر تھکے چل رہی ہے. اس آدمی رب سے, میں آپ کو ہر وقت رب کے بارے میں ریفر کرتا رہتا ہوں کیونکہ اور کوئی اینٹیٹی نہیں جو آپ کو اتنا کچھ سکھا سکے, سب جو سکھائیں گے وہ بھی رب سے ہی لے کے سکھا رہے ہیں. تو کیوں نہ ڈائریکٹ سورس پہ ہاتھ ڈال دیں ہم, تو یونیورس چل رہی ہے تھک نہیں رہی. جو تھک رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے سسٹم نہیں بن رہا, اس کا مطلب ہے ہم اپنے کام کو سمجھ نہیں پا رہے اور ابھی اس میں امپروومنٹ کی کا روم نہیں, پورا ہال ہے. تو اور میں ہمیشہ چیزوں میں اپنی غلطیاں پہلے نکالتا ہوں, دوسروں کے بعد میں نکالتا ہوں, اور میں جب اپنی ٹھیک کر لیتا ہوں تو پھر میں دوسروں کی طرف آتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی, اب باقیوں کی کیا کیا غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کریں گے اور ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور پھر آپ میریکلز دیکھ لیں. ہر چیز کا مجھے لوگ کہتے تھے, اور بڑے قریبی لوگ کہتے تھے कि जी FM नहीं होगा, HD3 नहीं होगा तो रेडियो नहीं चलेगा. वो चल रहा है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है. फिर उन्होंने कहा जी AM नहीं होगा तो नहीं चलेगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है. फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी फलान नहीं होगा तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है. वक्त के साथ साथ रब जब बीमारी देगा तो साथ उसका इलाज भी देगा. आपने सिर्फ ईमान पक्का रखना है, अपने काम को पक्का पकड़ के रखना है, अपने फेथ के ऊपर आपने काम करते रहना है. इर्द गिर्द फेथ अगर कम है तो उनमें फेथ घुसेड़ते रहना है आपने, ताकि उनका फेथ भी अगर कमज़ोर है तो वो नहीं चलेगा काम. क्योंकि इसके लिए तमाम लोग अपने अपने साथ एक ही, जब तक तमाम लोगों की सेम ब्रेन की सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तब तक रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे. हर वो चीज़, मैं जिस घर में हूँ, मैं जिस रिश्ते में हूँ, मैं जिस फैमिलीज़ में हूँ, मैं जिन फैमिलीज़ में हूँ, मैं जिन बिजनेसेस में हूँ, मैं जिन आउटफिट्स का साथ हूँ, उनमें जो चीज़ ये मैं कर पा रहा हूँ, जितना मैं रब का कानून उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाता हूँ. और वो लोग ढीला छोड़ते हैं खुद को, सिस्टम को, क्योंकि स्टेटस को चेंज करने के लिए बहुत कुछ ढीला छोड़ना पड़ता है. जैसे जैसे वो लोग ढीले छोड़ते जाते हैं उनके रिजल्ट्स बढ़ते चले जाते हैं. जिसका फेथ वीक है उसके फेथ पे काम होता रहेगा और वो रिजल्ट्स देंगे. मैं नहीं रोज़ दिखा सकता, मैं आज हूँ कल नहीं हूँगा. तो इस तरह साथ साथ मैं काम करता रहता हूँ, चीज़ों के रिजल्ट साथ साथ आते रहते हैं. आपने होल्ड करना है, मेरे साथ रहना है. मेहरबान, हमारे साथ वीडियो आजादी रोंद. वालेकुम सलाम. मुस्कुराता हुआ चेहरा, कैसे हैं
18: आप?
13: थैंक यू वेरी मच. ये बताइए, आप एनिवर्सरी का इंतजार कर रही थी कि एनिवर्सरी पे कॉल करेंगी?
18: नहीं नहीं, मैंने आपको एक बार और कॉल किया था.
13: एक बार आपको याद है? 14 साल से हमारा काम आपको याद नहीं है.
18: And right now also I'm driving actually.
13: And you were driving then also, by the way.
18: I'm sorry?
13: You were driving then also when you called the last time.
18: I stopped driving and then called you.
13: Yes, क्योंकि आप कह रही थी ना मैं गाड़ी में हूँ. जी जी, याद है हमको.
18: So anyway, your program is so amazing and I was listening, you were talking to some of the caller that initially when I started listening to your program, I couldn't believe that it's coming from a person who is from Midwest.
13: हाँ जी, यही तो. ये क्यों क्यों लेकिन?
18: I'm sorry.
13: क्यों? Why did you not believe that? And why was it so
18: because
13: funny?
18: I don't know. You know, I mean, I'm from there too, but I don't know. People are so complicated, mm-hmm. and they make everything so complicated, mm-hmm. and they don't. I don't know. They don't think straight as you think. And so I couldn't believe it honestly. That really.
13: तो फिर आपको पता चला कि ज्यादातर थॉट्स जो आप सीधा सोचा करती थी, दोज वर द राइट थॉट्स एंड एवरीथिंग एल्स वाज रॉन्ग एंड इट डिड नॉट गिव यू रिजल्ट्स. ऐसा ही था?
18: यस, एंड आई रियली लाइक इट वाज लाइक आई थॉट यू आर जस्ट एक्सेप्शनल वन एंड ओनली वन ऑफ अ काइंड इन दैट कंट्री.
13: नहीं, वन ऑफ अ काइंड मैं एक्चुअली था, बट इसलिए था कि मैं वो एक ही गोली मुझे दे रहे हैं और मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा. तो मैं वन ऑफ अ काइंड सिर्फ इस वजह से हुआ कि भाई मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट. सो आई स्टार्टेड ट्राइंग डिफरेंट मेडिसिंस एंड वन वर्क्ड. सो व्हाट वो मुझे पता चला दैट आई न्यू अबाउट दिस मेडिसिन ऑल अलॉन्ग एंड दिस मेडिसिन हैज़ बीन देयर फॉर सेंचुरीज एंड नोबडी वाज यूजिंग इट एग्जैक्टली विद डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट एक्सक्यूजेज, दे हैव डिफरेंट पीपल टू ब्लेम ऑन और डिफरेंट एनवायरमेंट्स टू ब्लेम ओवर और ऑन और अपॉन. तो ये इसी वजह से तो वो जब मैंने उसको बिलीव किया, मैं जब खड़ा हुआ, खड़ा होना था सिर्फ. जब तक आप खड़े होकर चलते नहीं हैं, मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ के साथ रहूँगा. ये हम चाहते हैं कि वो चीज़ मेरे साथ चल पड़े, जैसे हम चाहते हैं रब हमारे साथ चले. जी नहीं, रब वहीं पे है, वो कांस्टेंट है, एंटिटी है, वो परमानेंट था, है, रहेगी. आपने उसके साथ जाकर अलाइन करना है. ये आपकी विलिंगनेस है और आपके एक्शंस हैं. तो रब तो मेरे साथ था, मैं उसके साथ नहीं था, सिस्टम के साथ. तो बिल्कुल इसी तरह मैं स्ट्रेट था, क्योंकि मेरे अंदर जो डिवाइन स्पार्क है आपके अंदर भी वही है, वो स्ट्रेट था, उसके अंदर ये सारा कुछ पहले से था. तो मैंने उस पर ईमान ले आया, वो मेरा हिस्सा बन गया. बाकी लोग सारी ज़िंदगी उससे डिनाई करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम करते हैं, रोते हैं, वीक होते हैं, लेकिन वो वीकनेस किसी और पर डालते हैं. तो मैंने सारी की सारी वीकनेस खुद पर डाली, खास सारी गलतियाँ, सारे नुकसान जो मुझे हुए थे वो मैंने खुद पर डाले. तो सारा कुछ आसान हो गया. उसके बाद कोई गिला करने के लिए या ब्लेम करने के लिए रहा ही नहीं, मैं ही रह गया. तो इट वॉज जस्ट मी. तो जब मैं ही रह गया तो फिर और कोई था नहीं ब्लेम करने के लिए. तो फिर मैंने सोचा चलो उठो फिर काम शुरू करें. فرہاد کی طرح, تاکہ اپنی وہ دودھ کی جو نہر ہم نے نکالنی ہے پہاڑ سے وہ نکالیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ آپ جیسے کتنے ہی لوگ ہیں وہ سب اپنی اپنی کدالیں لے کے آگے, اور پھر بول کے لب آزاد ہیں تیرے ریڈیو آزاد میں چینج ہو گیا.
18: Yeah, I wish more people listen to your program and, you know, they start listening and applying. Oh my God, there'll be a big change.
13: آپ کو میں ایک کمال بات بتاتا ہوں, آپ نے شاید اس طرح نہیں سوچا ہوگا, بیکاز یو کین ریلیٹ ٹو اٹ, آپ کے لیے یہ سمپل ہے, تو آپ نے فوراً چیز کو پکڑا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اور یہ باتیں اور یہ کام سیدھے ہیں, ٹھیک ہے. اور سارے ریزلٹس جو وہ بتا رہے ہیں, کچھ تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بتائے چلے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کام اوتھینٹک ہے اور یہ ریزلٹ میں بھی کروں مجھے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا بندہ جو کبھی بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا اور کبھی اس کو یہ میریکلز دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے, وہ سب سے پہلی تھاٹ اس کے ذہن میں کیا آتی ہے؟
18: What?
13: Oh my God, it is so difficult. And he is so difficult. What is he talking about? It is so difficult. جس آدمی کو آپ کو یہ آپ کے اندر سے آواز آئی کہ یہ سیدھا ہے, سمپل کام ہے, اسٹریٹ ہے, اور اس جیسے اگر اور چیزیں ہو جائیں یا ایسی باتیں اور ہو جائیں یا کام ہو جائیں تو دنیا بدل جائے گی, ایسا ہی ہے؟
18: Right.
13: وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کتنا مشکل ہے, اور ایسے ہو گئے تو کتنا مشکل ہو جائے گا, اینڈ ہی از سو ڈیفیکلٹ, اینڈ ہز ورک از سو ڈیفیکلٹ, اینڈ ہز پرسنالٹی از سو ڈیفیکلٹ. تو اب آپ سوچیں ان کے ساتھ زندگی بھر آگے کیا ہونے والا ہے, جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. بیکاز اگر میں ڈیفیکلٹ ہوتا تو مجھے مشکل نہ ہوتی, میرے ساتھ کام نہ بنتے, میرے ریزلٹس نہ آتے, میرے رشتے مضبوط نہ ہوتے, فائنینسز نہ اچھے ہو پاتے, ہیلتھ نہ اچھی ہو پاتی, جو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا وین آئی اسٹارٹڈ. سو 30 سال تک آئی واز سفرنگ بیکاز آئی واز ناٹ ود مائی سیلف اینڈ ود دا ٹروتھ اینڈ ود دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ود ورکنگ آن مائی سیلف اینڈ ایکسیپٹنگ ایوری تھنگ اینڈ ورکنگ آن اٹ. دوسری طرف وہ دوسری ٹیم ہے جو کہ یہ ساری چیزیں نہیں مانتے, اور آخر میں جانے سے پہلے تو یو نو ماننا ہی پڑ جاتا ہے, مجبوری ہے, کیونکہ جب سب دکھ جاتا ہے تو وہ اتنی زندگی ضائع ہو جائے گی. اینڈ کین یو امیجن ہنڈریڈز آف ایئرز سے یہ سب ضائع ہو رہا ہے, واٹ اے ویسٹ. یہ بتائیے کب سے سننا شروع کیا؟
18: ایکچولی آئی ہیو بین لسننگ ٹو یور پروگرام ناٹ کنسسٹنٹلی,
13: ٹھیک ہے,
18: یو نو بیکاز اٹس ریسپانسبلٹیز اینڈ
13: ٹھیک ہے
18: job of course, but I started in one day December, I remember 2018. Achha. I was driving, I think you used to have your show on AM
13: radio,
18: 11 yeah. So I was one day I opened my radio and started listening to your program, and I don't know, I just felt just immediately connected to the program. And I was going through a life changing event that time. So for some reason I just kept listening to it because it just gave me more strength to come out of my that situation. And I took a break from my job that time, so I kept listening to it just to gain more strength. And I kept listening for like a year or so, and then I got busy with my job, and I think it changed. Then you stopped you know, transmission on AM, and then you switched to FM, I think
13: ji.
18: HD3, and then I did not have that in my car, so I started looking for the car
13: good
18: which has that radio actually, but so on and off I was listening, but
13: so
18: now
13: whatever you have been gathering, or on and off if you are gathering it, jab bhi koi takleef hogi na, main sirf aapko aur aapki reference se main bahut sare aur logon ko batana chahun, جب بھی آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہوگی, انرجی کو ضرورت ہوگی, اسٹارٹ لسننگ ٹو اٹ اینڈ ٹیک مور ٹائم آؤٹ اینڈ کیپ لسننگ ٹو اٹ, یو ول گیٹ انرجائز اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ, میں کسی دن ایکسپلین کروں گا آپ کو. لیکن جیسے ہی تھوڑا تھوڑا بھی آپ سنتی ہیں تو یہ بتائیے جو آپ نے سیکھا اس کو کتنے پرسینٹ اپلائی کر پا رہی ہیں ابھی تک آپ؟
18: So the last few months I'm listening quite consistently, and it really helps me because there's so many things you tell, like, you know, like simple roti kapda makan, and then exercise and relationships, just simple, you know. So
13: ye bataiye stress ka level kam hua?
18: I usually I'm a happy person, so okay. I try not to take stress.
13: Theek hai.
18: So I keep myself happy, but yes, okay. If there's something, it really, really helps, you know.
13: Self-acceptance mein aasani hui?
18: Yes, a lot.
13: اپنے ریلیجن, جو بھی آپ کا ریلیجن ہو, رب کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, کریئٹر کے ساتھ.
18: Yeah, oh yeah, I have, okay, one, that's something, of course, I really learned. You relate everything to the Quran, you know, and we have been reading Quran, and I learned this from your show actually, that this book is not to keep on the shelf and then open in the Ramadan and just put it back. So honestly, I started opening and started reading now. You know, whatever surah you mentioned, like Sumandi, you mentioned Ayat al-Kursi, I went home and literally read the meaning of it.
13: Pata chala usme kya likh rahi hain aap khuda se?
18: I'm sorry?
13: Did you understand what you are saying, claiming to God? In that Ayat al-Kursi, jab aap bol rahi hoti hain Arabi mein, to uska Urdu ka matlab samjha aapne ki kya baat kar rahi hain aap?
18: Yeah, I read in English.
13: Okay, how did you feel? Okay, good, perfectly
18: yes.
13: Fine.
18: Yeah, yes, it was so nice to read the meaning, you know.
13: And how did you feel about it? Do you feel more connected? Ki, this is what I am saying. This is what I am uttering. And
18: yes, and actually that's, I learned so many things that if I start talking to you, it will be hours to tell you.
13: Chaliye, batai, Rab se relationship better hua?
18: Yes, my namaz has gone better.
13: I don't try to relate it to Quran, but the thing is, जब आप सब कुछ रब से सीखते हैं तो इट मैं कहूँ या ना कहूँ ये सब वहीं चला जाता है क्योंकि आप इल्म में कभी भी यू कैन नॉट गेट वन फैक्टर वन एलिमेंट आउट ऑफ नॉलेज जो कि क्रिएटर ऑफ नॉलेज है तो वो बात उस तक चली जाती है. ये बताइए लोगों के साथ जो रिलेशनशिप हैं अब कम लोग अपनी ज़िंदगी में हैं और कम लोगों के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं.
18: Yes, yeah. I mean, I even otherwise also, I am a person who keep relation with the people who I am comfortable with.
13: Ji.
18: If I'm not comfortable, I just stop talking to them. Mm-hmm. You know.
13: ठीक है.
18: This is like always has been with me. If I'm not comfortable and if somebody, I know that that person is not right or that person has like, it's hard to understand other people's intentions. Mm-hmm. And what they have in their heart, you know, sometimes they are like double faces, they have something in their heart. And
13: overall, are you more skeptical of people? Aap jaldi ghabra jate hain, dar jate hain, ya aap badi jaldi apne shutter jo hai wo on kar lete hain?
18: Meeting people?
13: Ha, yeah, meeting people, giving them chances, getting more people into your life. The time lete hain na?
18: Yes, yes. I take time, you know. I mean, you come to know when you talk to people that, you know, if you start feeling that if you can be connected to them or not, you know.
13: आप जब शो सुन रही होती हैं आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ी देर के बाद उसका जवाब मिल जाता है साथ ही.
18: Yes, yes, definitely, definitely. Okay. I do get it.
13: ये शो आप ही के लिए आया है और ये जो ब्रेन वेव आती है ये आप ही जैसे लोगों के लिए और हमारी जैसे लोगों के लिए. इसलिए कभी कभी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जब भी आपको कभी लगे कि कोई थाट है जो बॉदर कर रही है, कोई ऑब्जर्वेशन है जो आप इधर उधर देख रही हैं, कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहती हैं लोगों के साथ, तो वो थॉट लेके आया कीजिए. उस थॉट को हम एक फूल आप लेके आएंगे, हम पूरा गुलदस्ता बना के आपके और लोगों के हाथ में पकड़ा देंगे. ठीक है?
18: Yeah, actually your program is so, I don't know, it's so amazing that when I am listening to your program, I feel like I'm out of this world.
13: Yeah, वो क्योंकि एक्चुअल में रब आपको ऐसा ही फील कराना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम हर वक्त परेशानियाँ, तकलीफें, मसाइल में रहते हैं. Once you get connected to the, आपको जब चार्जर में लग गई है ना आप, तो फिर जैसे फ़ोन फील करता है ऐसे आप फील कर रही होती हैं. जैसे आपको ऑक्सीजन प्योर लग जाए तो जैसे बंदा हाई नहीं हो जाता, तो आप और हम सब लोग हाई हो जाते हैं. इसीलिए तो पता ही नहीं चलता दो घंटे कैसे गुजर जाते हैं. ठीक है?
18: Yeah, 2 hours, okay. 2 hours. You just keep listening to it. And in fact, if I'm at home, I tell my kids, don't disturb me. You know, because I don't want to even miss a word of it.
13: आपको पता है कितने हस्बैंड्स, कितने मेरे फ्रेंड्स, कितने बच्चे हैं जो कहते हैं कि आपने हमारी माओ को, हमारे हस्बैंड्स को, हमारी बेगमात को एक डिफरेंट इंसान बना दिया और हमारी घरेलू ज़िंदगी इज़ मच मच बेटर. चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, इरिटेशन कम हो गई है, पर्सनैलिटी क्लैशेस कम हो गए हैं, रिजिडिटी लोगों में कम होती चली जा रही है. अगर ये सब कुछ आपके घरों में और ज़िंदगी में हो रहा है तो इसका मतलब है यू आर द लिसनर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रेडियो आज सही जगह पे आप हैं. अगर इसके अगेंस्ट जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब है ये आपके लिए नहीं है. पैसे फैसिनेशन है, अच्छा लग रहा है, जो भी मामला आते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी ये एक्चुअल में फिर आपके लिए नहीं आया. तो या तो आप अपने आप को चेंज करके एडजस्ट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे, फलां कैसे, नहीं इतना तो नहीं, ये तो दुनिया है, ये तो मसाइल हैं, ऐसे तो करना पड़ता है, देखें ना ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है आप हाफ हार्टेड हैं और हाफ हार्टेड आदमी मारा जाता है. यू हैव टू टेक वन साइड, या फोर्सेस ऑफ डार्क के साथ हैं या फोर्सेस ऑफ लाइट के साथ हैं. ये बात कि आप गलतियां नहीं करेंगे, गुनाह नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी, दैट्स ग्रांटेड, सब कुछ होगा, दोनों साइडों पे होगा, गलतियां दोनों तरफ होंगी आपकी, बट एटलीस्ट यू हैव टू चूज द टीम. ठीक है? Nice of you.
18: You're the last. One more thing. I'm sorry.
13: I'm the last of the show.
18: What you say? दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा. Actually, this always reminds me of my father. I don't know. It just links to him because he always used to say the same thing.
13: Actually, ना वो पाकिस्तान से थे?
18: No, I'm from India originally.
13: अच्छा. ये जो हमारे दो तीन लोग हैं जो ये चीज़ें कहा करते थे, मुझे बाद में पता चला एक्चुअली हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे पाकिस्तान के, शफाक अहमद साहब, ये वो कहते थे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. मैंने किताब से, मैंने रब से लिया था. वो कहते थे तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है. तो उससे हुआ क्या कि जब मैंने चीज़ों को, जब मैं सोचा कि जब आप आसानी करेंगे तो उसकी रिटर्न में आप ही के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, अगर रब कह रहा है तो ऐसा ही होगा. तो मैंने आई केम अप विद इट लाइक दिस. बट वो उन्होंने अपने ज़माने में कहा हुआ था, क्योंकि ये सब हम एक ही सोर्स में हाथ डाले हुए हैं, वहीं से ये सब कुछ आता है. तो कभी कभी इवन सरप्राइजिंगली कुछ नज़में ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं लिखता हूँ या किसी ने लिखे होते हैं, वो एग्जैक्टली वही होते हैं जो सेंचुरीज पहले कोई कह चुका होता है. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. आपने अपनी आसानी ज़रूर करनी है हमारे लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका हक अदा करने के लिए कभी कभी खुद आके कॉन्ट्रीब्यूट करें, अपना पॉइंट दें. आज मैंने आपको इतनी लंबी बात इसलिए भी ऑन एयर की कि बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते इस तरह खुलकर. तो आपने उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट किया. आपको भी कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ रेडियो आज़ाद और ग्रेट फॉर मैम. थैंक यू वेरी मच. वालेकुम सलाम. और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
19: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
20: Inspire FM.
21: Inspire 105.1 FM.
22: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
23: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and duas. Ameen.
24: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
25: When they asked the Prophet, they said, what is the best dhikr that exists? They said, Ayyu dhikri afdalu ya Rasulullah. They said, which dhikr is the best dhikr, O Messenger of Allah? Ya Rasulullah. And he said, it's La ilaha illallah. What did he say? La ilaha illallah. I'm going to tell you to do one thing. I want you to now seal your lips. Seal your lips. Seal your lips. Seal your lips. Now I want you to say in your mouth, moving your tongue, but not moving your lips because you don't need to move your lips. Say, La ilaha illallah, God. See the beauty of that dhikr? You don't need to move your lips. God, say, no one needs to know you're doing it. You are absolutely sincere. It's you and Allah. That's the only dhikr that exists you can say with your mouth closed and nobody knows what you're doing.
0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
3: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
13: Insaan, jo ke mera meri fascination, romance hai mera, human being. Uske baad, Rab, matlab jo creation hai, creator. उसके साथ ये दुनिया जो कि मेरे साथ क्रिएट की गई है और चौथा मैं ये चार चीज़ें इन चार चीज़ों के बारे में बोल के लब आज़ाद हैं तेरे रियलिस्टिकली इनके बारे में बात करना चाहता है फैलेसी मिस्टेकन बिलीफ पे नहीं जो 10 15 20 25 30 साल तक सीखा समझा और मुझे सिखाया बताया समझाया गया वो नहीं उसको छोड़ कर जब मैं ईमान लाया ठीक है जी मुसलमान होना और चीज़ होती है ईमान लाना और चीज़ होती है इसीलिए जो हुज़ूर पाक के पास जब लोग आए तो रब ने कुरान में उनसे कहा कि इनसे कहो कि तुम मुसलमान हुए हो तुम ईमान नहीं लाए और आगे फिर ईमान लाने वालों की उन्होंने लिस्ट की कि उसमें ये तमाम चीज़ें जब तुम्हारे अंदर आएंगी तो जब ईमान आदमी ले आता है किसी एक चीज़ के ऊपर तो फिर वो आदमी वैसा नहीं रहता जैसा वो था वो वैसे नहीं सोचता जैसे वो सोचता था वो वैसे नहीं करता जैसे वो करता था वो चीज़ों में मकसदियत मीनिंग ढूंढता रहता है उन चीज़ों में खुशी सुकून रिजल्ट्स ढूंढता रहता है उनसे वो रिलेट करना मार्फत की तरफ वो जाता है कि अगर ये फूल इतना खूबसूरत और इतनी कमाल चीज़ मुझे मिल गई और इतना कमाल इंसान मुझे मिल गया तो इसको क्रिएट करने वाला इसके बीच में ये नज़ाकत से ले के खूबसूरती और ये इमोशन इंसान के डालने वाला जो है वो कितना कमाल होगा और मेरे तक जो चीज़ आई है मुझे उसके साथ कैसे डील करना है इसलिए वो कमिट करना है जो आप दे सकें वो बात करनी है जो आप कर सकें या करके दिखा सकें या उस पर एटलीस्ट कोशिश करें और ये सब कुछ आप जब कर पाएंगे और इस दुनिया के लिए उतना करना है मुझे जितना मुझे इसमें रहना है तो और लोगों के साथ भी समझना है कि लोग रास्ते के हम सफ़र हैं सफ़र नहीं है सफ़र हमारा वो मकसद है और एंड हमारा लोग नहीं है वो ज़ात है जिसने हमें जो हमारा शुरू था वही हमारी इब्तिदा थी वही हमारी इंतहा है और इसके बीच में अगर किसी को लगता है कि मैंने इस सर्कल से और इस रास्ते से निकलने की कोशिश नहीं की तो 30-32 साल में वही सारी कोशिशें करता रहा पहले मैं वो सारी चीज़ें करता रहा कि मैं किसी तरह इस ट्रूथ से अपनी जान छुड़ा लूँ और ये ना हो ऐसे और मैंने हर वो काम करके देखा, लेकिन इससे कोई छूट नहीं है। इंसान को इधर ही वापस आना पड़ेगा, वो जहाँ से शुरू हुआ था वो वहीं पे जाके ख़त्म होता है। लेकिन उसके बीच में उसने किया क्या, उसने सोचा क्या, उसने बनाया क्या, उसने बनाकर दिया क्या, उसने क्रिएट क्या किया, उसने फील क्या किया, उसने लोगों के अंदर क्या जज्बा पैदा किया, और उसने कैसे ट्रूथ को ट्रूथ की तरह, उसने दिल इतना बड़ा किया, दिमाग इतना बड़ा किया अपना, कि सच को, हक सच को सच के तौर पे ले सके, उसमें अपनी ख्वाहिशात ना डाले, और जब कोई चीज़ आए कहीं से तो उसमें अपनी ज़ात से चीज़ें ना डाले, जिसने जो तोहफ़ा दिया है उसको वैसे ही लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करे और अपनी पर्सनल ख्वाहिशात उसमें ना डाले। वो एक लाइन थी आज़ाद थाट में जो मैंने लिखी थी कि विजडम बिगिनस फ्राम द डे You start seeing things the way they actually are, rather than what you want or desire them to be. ये जब आप इससे बाहर निकलेंगे ना, जो चीज़ जैसी है, रब आपको हकीकत पसंद बनाना चाहता है, रब हक है सच, वो आपको सच से कनेक्ट करना चाहता है। झूठ और धोखा, ये दोनों चीज़ें आपका उससे कनेक्शन काट देगा, वक्ती भी होगा तो कट जाएगा, जब तक आप उससे रुजू नहीं करेंगे जिसके बारे में वो बार बार कहता है। उसी को वो रहमत भी कहता है, उसी को वो तौफीक भी कहता है, उसी को अपनी मगफरत भी कहता है, और यही वो कहता है कि कुछ कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। क्योंकि इबलीस वर्ड जो है ना अरबी में, उसका मतलब ही ये है, इंतहाई मायूस। वो मायूस है, हम मायूस नहीं हैं। किसी वक्त कहीं पर कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी कोई मिरेकल भी कर सकता है। अपनी कोशिश आदमी करता रहे, अपने आप को बेहतर करता रहे, कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म करता रहे, ये हमारा मकसद है, ये इस शो का भी मकसद है, ये हमारी ज़िंदगी का भी मकसद है, ये इंसान होने का भी मकसद है। इससे ज़्यादा इस बात को मेरा नहीं ख्याल मैं एक्सप्लेन बेहतर कर पाऊँगा। सही हो गया
4: जी ना।
13: गुजारा हो गया
4: जी।
13: अब आपको जाने दूँ?
4: हाँ जी,
13: खुदा हाफिज। किसी और मेहरबान को लेते हैं जो मोहर मेहरबान लग रहे हैं। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर। वालेकुम सलाम। मैम
4: मुबारक मुबारक।
13: सलामत सलामत, पुराने जमाने में हमें इतना ही पता था।
4: किसी ने कहा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए।
13: बिल्कुल।
4: अब तो बदनामी का शोहरत से ये रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो आजकल जो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी, चाहे वो रेडियो स्टेशन हो, मूवीज हो, टीवी मीडियम हो, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी का चैनल हो, सबको, हर लोग जो है सब कुछ करने को तैयार हैं। किस लिए? टू गेट द वायरलिटी। और वायरल होने में क्या चक्कर होता है? उनको कमेंट्स भी मिलते हैं, उनको अट्रैक्शन भी मिलती है, उनको फॉलोशिप भी मिलती है।
13: अब आप समझ गए, हम वो सारे क्वालिफिकेशन,
4: उनके लाइक्स भी मिलते हैं,
13: हम वो सारी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई नहीं करते, इसीलिए हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलता और ना हमें ये चाहिए।
4: आगे सुनिए तो सही। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म लॉस किया, जिसको रेडियो आजाद ने इन 14 सालों में ग्रैब किया। और वो लॉन्ग टर्म गेन क्या था? इंटेग्रिटी का। तो रेडियो आजाद के ये जो 14 साल गुजरे वो इंटेग्रिटी में गुजरे, और जिसको आखिरी दम तक शायद रेडियो आजाद का ये एक स्लोगन और एक लोगो भी बन सकता है, वो हमें, हम सुनने वालों को, देखने वालों को कहाँ नजर आता है? अगर कोई पूछे, वो नजर आता है आपके फंड रेजिंग में। जब एक प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होकर, देसी लोगों में बहुत गिने चुने उंगलियों पे लोग होंगे, जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और लोग फंड रेजिंग के लिए बात करेंगे, तो वो लोग अगर उस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रब की तरफ से ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ऑन एयर आकर अपनी हक हलाल की कमाई से पैसा कमाकर अगर वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डोनेट करते हैं, तो वो उस प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी को शो करता है। वो इंटेग्रिटी रेडियो आजाद की कहाँ नजर आती है? उन तस्वीरों में जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, जो हम देखते हैं, चाहे हम शहर में हैं या नहीं है, वो चेहरे जो उस क्राउड को देखकर आपके प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी नजर आती है। क्योंकि जनरली जब आप इवेंट्स में जाते हो तो जो लेवल ऑफ क्राउड है वो लेवल ऑफ कमिटमेंट को शो करता है। तो ये रेडियो आजाद की इंटेग्रिटी जो उसने कमाई है। तो बींग यू नो कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मैं रब करे कि इस सफर में जो रेडियो आजाद का आने वाला है, और बहुत से खूबसूरत जहन और दिल रखने वाले लोग आपकी टीम में और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जरिए जो है, एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, एज अ लिसनर, वो काम करें और ज्वाइन करें, और आपका काम एज अ आजाद खान इट्सेल्फ और रेडियो आजाद का नाम हम लोगों को इसी तरह से एंटरटेन, इंफॉर्म और इंस्पायर करता रहे.
13: सो नाइस.
4: और आप और ज्यादा तरक्की करते रहे.
13: आज हमने एक नया 14 साल के बाद हमने आज पहली दफा मैंने वर्ड यूज किया आजादियंस का. अगर हमने कमेंट्स वो जो हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर, आयशा जी और हमारी जो टीम मैनेजमेंट वाली है उन्होंने जब डाला तो मैंने उसमें लिखा व्हाट कैन आई से ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स जो आज़ादियंस हैं. तो आज मैंने पहली दफ़ा खुद ये वर्ड यूज़ किया है. मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया, ना किसी और ने शायद किया हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो 14 साल के बाद अब मैं जैसे इसको विजन जहाँ तक थी
4: फील कर,
13: वो अक्सर लोग जो मुझे पूछा करते थे कि जी आप रेडियो आज़ाद को कहाँ देखते हैं, तो मैंने कहता था जी अपने वक्त पर आएगी, लेकिन अब मुझे रेडियो आज़ाद जहाँ नज़र आ रहा है और जिन रीजंस की वजह से नज़र आ रहा है उसमें जितना टाइम पड़ेगा, जितनी एफर्ट्स पड़ेंगी, जितनी रिसोर्सेज पड़ेंगी, जितनी हमारी टीम पड़ेगी, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं इतने सालों से जमा कर रहा था कि ये बेसिक्स हो जाए, हमारी ट्रेनिंग भी हो जाए हम तमाम लोगों की, लोगों को अपनी यू नो चीज़ों में वीकनेसेस स्ट्रेंथ सब नज़र आ जाए, उसके बाद हम इनके ऊपर काम करें और टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइंड हो गई है. तो अब इंशाल्लाह वो मौका आ गया कि हम इसको आज़ादियंस का ये जो काम है हमारा रेडियो आज़ाद की, का उसको आगे बढ़ा सके. जी
4: एक इस बार आज के दिन की मुनासिबत से, क्योंकि आपने इस पौधे को पड़ा किया 14 साल का, जब कोविड आया था ना आजाद, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत टफ डिसीजंस लिए थे. किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी टाइम इज टफ सो वी शुड लेट गो ऑफ पीपल. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि टाइम इज टफ सो वी शुड नॉट लेट गो ऑफ पीपल. तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा पला पूरा किया, या आपका थॉट प्रोसेस था या जो भी था इसमें बींग अ लीडर, और एक जनरली आप लाइफ में हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग, और इसमें कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करते हैं, स्पेशली इमोशंस को, क्योंकि जब एक चीज आपने बनाई होती है, लगाई होती है, और उस फैक्ट और आप एक लीडिंग पोजीशन पे हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन मेकिंग.
13: बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि आप लोग सिर्फ रेडियो आजाद के हिसाब से तो दूंगा ही मैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको जिन टीम्स में आप लोग काम करते हैं, जिन फैमिलीज में, जैसे फैमिली भी एक टीम होती है, आप अपनी फैमिली में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं जो आपका सवाल है, जिसका जब मैं जवाब दूंगा, और साथ साथ रेडियो आज़ाद की चीज़ भी हो जाएगी. देखिए एक तो मैं रेडियो आज़ाद का फाउंडर हूँ, क्योंकि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे एक शो था. पहले मैं किसी और रेडियो स्टेशन वगैरह के लिए काम किया करता था. कुछ साल तक हमने एक दो स्टेशंस पे काम किया, बल्कि 3 स्टेशंस पे डिफरेंट पे काम करने के बाद हमने अपना रेडियो स्टेशन जब पहला खोला, टाइम ब्रोकेज वगैरह जब हमने किया, तो वो 3 घंटे का एक शो था बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. उसमें फिर आयशा जी हमारे साथ आई, और उसके बाद तो इस तरह रेडियो आज़ाद, और फिर लोगों से ही हमने 30-32 नाम थे जो ऑन एयर हमने लोगों ने दिए, फिर हमने उसमें से 3 शॉर्टलिस्ट किए, उसके बाद रेडियो आज़ाद का नाम जो है वो फाइनल जो है वो हुआ. उसके बाद इसको आप ये कह सकते हैं कि चलें फाउंड हो गया, फाउंडर हमें कर लीजिए, लेकिन रेडियो आज़ाद को बड़ा करने की जो जिम्मेदारी है और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो क्रेडिट है वो आयशा जी को जाता है. और उसके बाद साथ साथ जो हमारी टीम आती रही, हर एक ने हस्बे तौफीक हस्बे हाल जो भी साथ साथ हमें सपोर्ट किया. ये जो आपका क्वेश्चन है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ा करते हैं तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है और जो इमोशंस उसके साथ आपके जो होते हैं, कि मैं जब किसी चीज़ को पहले जब ज़िंदगी में मैं कोई चीज़ें वगैरह बनाता था तो वो और तरीके से होती थी, इसलिए उसमें कोई इतना कमाल नहीं हुआ, चीज़ें बन गई, चलती भी रहीं और हो भी गई. लेकिन बोल के लब आज़ाद हैं तेरे की वजह से, क्योंकि रेडियो आज़ाद बना है, तो इसकी जो सारी की सारी विजन थी उसमें मेरा पूरा फोकस एक ही होता है कि जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद को नहीं छोड़ना, और जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसमें सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज़ पिक एंड चूज़ करनी है जो उस मकसद से रिलेट करती हैं. और अलाइन मैंने सिर्फ इसको लॉज ऑफ यूनिवर्स के ऊपर रखा हुआ है, रब के जो कानून है वो अगर इसके अंदर आते हैं, जिसमें नीयत से लेके एक पूरा प्रोसेस है काम करने का. और अगर ये सोशल बिजनेस है तो फिर वो मैंने हुजूर पाक से सीखा कि वो कैसे बिजनेस करते थे, अपनी चीज़ की का ऐप बताकर. तो इसमें कमज़ोरी क्या है वो सब चीज़ें मैं खुद बताता हूँ, इससे पहले मुझे लोग बताएं, जैसे मैं अपनी ज़ात की भी सारी कमज़ोरियाँ खुद लोगों को बताता हूँ कि वो मुझे बताएं आगे से, क्योंकि मैं होश की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं. तो जहाँ तक चीज़ है, आप किसी एक चीज़, जैसे आपका बच्चा होता है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव करके रखेंगे और सब कुछ अपने पास ही रखेंगे तो वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा. तो उसकी को आज़ादी देनी पड़ती है, लोगों को चीज़ों में कुछ फ्री हैंड देना पड़ता है. हर आदमी को कुछ जॉब्स होती हैं, जॉब اپنے اپنے جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو جب یہ جابز یا آپ اس کو رول ڈیفائن کر, رولز ہوتے ہیں سب کے اپنے اپنے, کئی رول لوگ زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اور مشکل تکلیف پریشانی میں وہ زیادہ رولز کر رہے ہیں کیونکہ کر رہے تھے, وہ آہستہ آہستہ ان کے رول کو آپ نے بالکل کلین کر کے کلیئر کرتے جاتے ہیں جب تک ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا. وہی شعر جو میں کروڑ دفعہ سنا چکا ہوں اور ہمیشہ ہر دفعہ نیا لگتا ہے, زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی ایک چیز جو چلنے والی ہے, جس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, اس کو کانسٹنٹلی ساتھ چلائے رکھنے کا طریقہ عناصر میں ظہور ترتیب, ہارمنائزنگ افیکٹ ان دا آل ایلیمنٹس پریزنٹ. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا, انہی ایلیمنٹس کا ڈس ارے ڈسٹربنس جو ہے وہ موت ہے کسی بھی چیز کی. تو آپ نے ایلیمنٹس دیکھنے ہیں کون سے ہیں, ان کا اسٹرینتھ دیکھنی ہے. ہر ایلیمنٹ میں اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ہر ایلیمنٹ میں ویکنیس ہوتی ہے. اس کے بعد جو اوپر بیٹھ کے پلان کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر ایلیمنٹ کو دیکھتا ہے, اور اس پلاننگ کے اندر بھی جو پلان ہے نا, اس کا جو اوپر پیکج ڈیل ہے, اس میں بھی ایک اسٹرینتھ اور ایک ویکنیس ہوتی ہے. تو اس کو جانتے ہوئے باقی لوگ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں سے, اور پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ماحول انوائرمنٹ کنڈیوسو ہے کہ نہیں اس گول کے لیے جو آپ چاہتے ہیں, یہ لوگ جو آپریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کنڈیوسو ہیں کہ نہیں, اور اگر ہیں تو کتنے, اور نہیں ہو سکتے تو کیا ریزن ہے, کون سی چیزیں بیچ میں سے نکال دی جائیں گی تو یہ زیادہ کنڈیوسو اور زیادہ بہتر پرفارمرز بن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو فری ہینڈ بھی دینا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آبزرویشن بھی ساتھ آپ نے رکھنی ہوتی ہے, اور جہاں پر بھی چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں آپ دوبارہ الائن کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو, اور ساتھ ان کو یہ ریزنز بتاتے بھی ہیں اور ساتھ چلاتے بھی ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے, جیسے گھر میں بہت پین اسٹیکنگ پروسیس ہے, اور جو بھی گھر کا لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اگر وہ چیزوں کو آبجیکٹیولی نہیں دیکھ پائے گا, اور جس جس کا جتنی پنشمنٹ بنتی ہوتی ہے اتنی جس کا جتنا ریوارڈ بنتا ہوتا ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم رب سے آپ سیکھتے ہیں, کیرٹ اینڈ اسٹک کا انسینٹیو دیتے ہیں, اس کے حساب سے آپ لوگوں کو کام بھی دیتے ہیں اور چیزیں بھی آپ ان کو بنا کے دیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں انکریز کرتی ہیں. کیونکہ خود میں سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس والا آدمی ہوں, میں خرگوش کے کام پہ کبھی مجھے نہیں پسند تھا, وہ کچھوا بہت اعلیٰ تھا جو ریس آخر میں جیت گیا. سلو اینڈ اسٹڈی, اس پیشنس کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اسی حساب سے آپ نے ان چیزوں کو لے کے جانا ہوتا ہے. ان کے اندر آپ نے فیتھ بھی ڈالنا ہوتا ہے, سب کچھ انکلکیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. گھر میں جیسے آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے, سسٹم بنائیں گے, اسی کا آپ کو بعد میں فائدہ ہوگا. نہیں کر پائیں گے بہت بڑے بڑے آپ کو نقصان ہو جائیں گے. جو چیز آپ اس گھر سے کر پائیں گے وہ آپ کی وجہ سے ہے, بائی دا وے لیڈر کی وجہ سے. جو چیز آپ اس گھر سے نہیں کر پائیں گے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے, اس لیے آپ نے ٹف لو کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کرنا ہے, لیکن ذہن میں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی, آؤٹ فٹ کی بھلائی اور مقصد پہ آپ نے لگے رہنا ہے. جب تک آپ یہ سارے کام کریں گے اور کوئی چیز آپ کا جو اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے آپ کمپیٹ نہیں کرتا, وہ ٹیم کا کیپٹن جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی بندے سے کمپیٹ نہیں کرتا, اور جس بندے میں یہ کمپٹیشن یا اپنی خواہش یا اپنی چیزیں یا فیورٹزم ہوتا ہے وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ چھوٹی سی آرگنائزیشن ہو, چھوٹا سا گھر ہو یا بڑی سے بڑی کمپنی ہو, وہ اپنے آپ سے باہر نکل کر ظرف بڑھانا پڑتا ہے اپنا. اور ظرف کیا ہے؟ دی ابلٹی ٹو تھنک اینڈ ٹو ڈو bigger and better than yourself. جب آپ یہ انٹروڈیوس کرائیں گے, جیسے رب نے کہا کتاب سے, آپ وہ لوگے جتنا آپ کا ظرف ہے, تو جتنا بڑھاتے جاؤ گے ظرف کو اتنے ریزلٹس آتے چلے جائیں گے. خود کسی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, جس نے جو کیا اس کے حساب سے آپ نے ریوارڈز دینے ہیں, نہیں کیا تو اس کے حساب سے آپ نے پنشمنٹس یا جو پازیٹیو ری انفورسمنٹس ہوتی ہیں آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں. دوسری بات, آپ کا دل گردہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں سسٹم میں اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, جیسے کینسر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پوری ریڈیشن, کیمو تھراپی اور جسم کو کاٹ کے پارٹ کو نکالنا ہے, اس کے لیے آپ نے بروٹلی آنیسٹ ہو کر نکالنا ہے, کیونکہ آپ لائل ہیں اس کام سے, تو آپ نے سمجھنا ہے. اور جو لوگ اس کام کے لیے نہیں ہیں وہ نکلیں گے, اور جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ رہیں گے اور اس کے ریزلٹس آئیں گے. سو یہ آپ نے سمجھنا اور کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے بہت لوگ بہت کچھ سوچیں گے آپ کے بارے میں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگ, کیونکہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا, ہر بندے کو جسٹس پسند ہے, بس جسٹس کرنے والا نہیں پسند ہوتا, کیونکہ جب جسٹس ہوتا ہے تو ایک کے حق میں ہوگا, ایک کے خلاف ہوگا, جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو آپ بالکل پسند نہیں ہوتے. لیکن ٹرین کر کے لوگوں کو اتنا سمجھانا اور ان کو پتہ ہونا کہ इसका भी कोई रीज़न है, पीछे हट जाए खैर है कोई बात नहीं, ये समझना ज़रूरी होता है। जिसमें ये समझ नहीं होती वो सिस्टम उसको, और सिस्टम ऐसा है जैसे रब का सिस्टम है, वो उसको खुद ही उगल देगा। वो जैसे लोग जिन्होंने आते हैं टीम में, जिन्होंने जाना होता है, मैं पहले बता देता हूँ, वो नहीं टिकते, और जिन लोगों ने टिकना होता है वो टिकते हैं। और इससे कोर टीम भी होती है, वो लोगों का एक जगह पे होना, तीन चार लोग जब मिल जाते हैं ना, तीन चार लोग, एक बंदा एक हद तक ही मिरेकल करेगा, दो बंदे उससे ऊपर मिरेकल हद तक कर सकते हैं, तीन चार लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डायरेक्शन हो जाती है, तो दुनिया में कोई किसी भी चीज़ को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी इसका मुंह बोलता सबूत है। तो दैट्स द होल प्लान। अपने आप से बाहर निकलना सीखना पड़ता है, दिल को बड़ा करना पड़ता है, लोगों की बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उनका जो गिफ्ट है उस पर फोकस करना पड़ता है, उनकी वीकनेसेस को आहिस्ता आहिस्ता वो सोनार की तरह टिक टिक टिक टिक हथौड़ी की तरह करके, लेकिन साथ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। किसी को जब तक आप लोगों को कुछ देंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको सब कुछ मिल सकता है जब तक आप लोगों को वो देंगे जो उनको चाहिए। ये सब जब आप करते रहेंगे तो चीज़ें सीधी रहेंगी। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है।

0: कभी भी ज़िंदगी के शुरू के सालों के अलावा उस वक्त नहीं समझ नहीं थी कि मैंने जो काम को पकड़ा हो, एक तो वो काम सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जब तक मैं उस काम में खुश हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ, जब तक मैं उस काम पे लगा हूँ मैं खुद सक्सेसफुल हूँ, जब तक वो छोटे मोटे रिजल्ट्स दे रहा है वो काम सक्सेसफुल है और आहिस्ता आहिस्ता उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काम सक्सेसफुल है। दुनिया मेरे काम को या मुझे कैसे देखती है, दुनिया इस काबिल अभी नहीं हुई, अभी दुनिया ना छोटे बच्चे की तरह, वो चलना भी नहीं सीखा उसने, तिफले मकतब की तरह, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है, तो उस अभी वो बहुत लंबे चक्कर काट के वापस आएगी, क्योंकि मैंने जिस सोर्स में हाथ डाला है उसी ने दुनिया बनाई है, वो दुनिया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में सब देख चुका, उसके बाद उसकी चाहत को जब आप समझ जाते हैं तो फिर कोई मसला रहता नहीं है कि आप कभी वापस आएंगे, आप सिर्फ आगे जाएंगे। एंड वन डे यू विल क्रिएट समथिंग बिगर बेटर देन योर सेल्फ एंड देन यू विल फेड इन ओब्लिवियन। यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग फॉर यू। ये बूटा किसी के लिए लगाया गया है, ये इसके फल आप थोड़ा बहुत और बाकी सब किसी और को मिलेगा, इसकी छांव किसी और को मिलेगी और जो जितना अच्छा इसको आगे लेके चलेगा ये उसके लिए होगा। मेहरबान हमारे साथ थोड़ी थोड़ी करते हैं उनसे बात। रेडियो आज रोंदिए।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर
0: जी। वालेकुम सलाम मैम,
1: क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो 14 खूबसूरत और प्यारे साल रेडियो आजाद के लिए।
0: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। आवाज में बड़ी खनक है, खुश लग रही हैं।
1: देखिए, खुशी महसूस करने वाली चीज होती है, अगर ना भी होना तो भी मुस्कुराहट सजानी चाहिए, क्योंकि उससे फिर बहुत से लोगों का भला भी हो जाता है।
0: वो भी, और आपको पता है कि आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप खुश हैं, यानी जब आप मुस्कुराती हैं या खुश रहने की कोशिश करती हैं तो वो आपको वही फीलिंग देना शुरू कर देता है।
1: जी बिल्कुल, और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को, खुशनसीब कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत टीम के साथ मैं जुड़ी, मुझे टाइम, मतलब मुझे यहाँ पर अपनी बात कहने का एक फ्रीडम मिला जो कहीं और प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलता। अपनी मर्जी से हम टॉपिक चूज करते हैं और फिर उसके ऊपर जितनी बात कर सकते हैं कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हमें कुछ फिल्टर करके बात करनी पड़े या कहीं रोक टोक हो। तो आपका सिर्फ शो ही नहीं सर, बोल के लब आजाद हैं तेरे, एक्चुअली आपने रेडियो आजाद की पूरी टीम को ये फ्रीडम दी है जिसकी वजह से हम सारे बहुत ब्लेस्ड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आयशा जी जैसी हमें जो है वो मेंटोर दी हैं, जो कि लिटरली शी इज वेरी ऑसम वुमन, क्योंकि वो जिस तरह समझाती है, जिस तरह गाइड करती हैं और जितनी एफर्ट्स वो उसमें सब डालती हैं ना, इट्स रिमार्केबल। तो आपको और आयशा जी को तो लाइक सबसे ज्यादा मुबारकबाद, और फिर उसके बाद जितनी भी टीम हम मुझसे पहले थी, जो अभी भी मेरे साथ सब आरजेज हैं, सबको मुबारक हो और सबको अपना अपना शेयर, अपने अपनी एफर्ट डालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे रेडियो आजाद के नाम से जानता है या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तो मुझे ये टैग नेम जो है ना, ये लिटरली बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड लगता है। और मतलब कहते हैं ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडनेस फील होती है कि यार मैं इस टीम के साथ हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। खासतौर पर आप लोगों का जो रेडियो थॉन था वो तो इट्स अ ब्लास्ट, क्योंकि जिस तरह से आपने और आयशा जी ने लेकर चले, और ऑब्वियसली ये बात रिमार्केबल होती है कि एक फास्टिंग के वक्त में जब हम बोल बोल के थक जाते हैं, हमें थर्सनेस फील होती है, लेकिन वो सब होने के बावजूद एक कहते हैं ना, एक मिशन को लेके चलना और उसको आगे तक प्रोसीड करना, ये कोई इतनी आसान काम नहीं होता है। लोग समझते हैं कि आप 2 घंटे बैठे हैं बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप अकेले बैठ के बात तो करके देखें, जब तक आपके लिसनर्स आपके साथ नहीं जुड़ते ना, आप उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाते ना, इसका मतलब आपने उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। और आवाज के साथ उसका रिश्ता बनाना जो सबसे डिफिकल्ट काम है जो मैंने यहाँ सीखा है।
0: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल थॉट्स, आपके काइंड वर्ड्स, और ये जो भी हमारे साथ जुड़ने का और इतना खुलकर, ये जो फ्रीडम, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है जिसके बारे में बात करता रहता हूँ, ये आपने अच्छा बताया कि आप लोगों को एग्जैक्टली वही फ्रीडम मिली हुई है जो मैं अपने शो में यूज़ करता हूँ और जो मैं बताता रहता हूँ। तो एग्जैक्टली आप तमाम लोगों को भी, सिर्फ एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और बाकी लोगों को भी रखना है, और बाकी जो भी आपका सारा कॉन्टेंट है वो क्रिएटिव फ्रीडम आप लोगों को दी गई है। और ये किसी और रेडियो स्टेशन, किसी और टीवी स्टेशन, किसी और मीडिया में 6 देख चुका हूँ अभी तक, कहीं पर ये ऐसे नहीं होता। तो जब आप कोई चीज़ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, उसका डिफरेंशियल एडवांटेज डिफरेंट चाहते हैं, जब आपके गोल्स डिफरेंट हैं, जब आपका मकसद डिफरेंट है, तो फिर आपकी टीम, आपके लोग, ये तमाम चीजें डिफरेंट होंगी, तो फिर आप उस मकसद की तरफ जाएंगे। सो वेरी ग्रेटफुल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। रेडियो आजाद, यू आर ऑन द एयर। हेलो हेलो, आप कट गए जी, दोबारा कॉल कर सकते हैं। बर्नौल नहीं है हमारे पास, 972-501-9390। सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद का ये स्पेशल शो जो हम कर रहे हैं जी आपके साथ, और उम्मीद

करते हैं कि चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। नंबर अगर आपका चल रहा है साथ साथ, तो आप लोग कॉल्स करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका हम इसके बाद भी आपसे थोड़ा सा टाइम हम रेडियो आज़ाद से ले सकें। नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

करें। एतिकाफ के बारे में जरा, कुछ लोग तवाफ कर रहे हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा की तादाद में लोग एतिकाफ कर रहे हैं। एतिकाफ के फवायद में से ये भी है कि वो एतिकाफ सिर्फ हरम में नहीं होता, एतिकाफ और जगह भी किया जा सकता है। तो तादाद बढ़ गई कि नहीं? अच्छा, उसके बाद किसका जिक्र है? रुकू का। रुकू करने वाले इससे कहीं ज्यादा तादाद में है कि नहीं? और हर कोई जो एक रुकू करता है उसके हर एक रुकू के हिसाब से कितने सजदे बनते हैं? तो सबसे ज्यादा तादाद में कौन सी इबादत हो रही है? सजदे वाला। फिर नमाज के अलावा भी सजदा है। सजदा तो शुक्र है, सजदा तो तिलावत है। तो सबसे ज्यादा की जाने वाली इबादत जो है वो सजदा है। सो कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। लिताइफीन वल आकिफीन वर रुक्का अस्सुजूद। सुबहानअल्लाह।

0: ये कुछ के हाँ इमाम शाफी के हाँ और कुछ और के हाँ ये सजदे की आयत है, एहतियातन हम नमाज की ब्रेक में या अगली ब्रेक में आप लोग सजदा कर लेना। या अय्युहल लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल ख़ैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। रुकू करो अहले ईमान, रुकू करो, सजदा करो, अल्लाह की इबादत अपने रब की इबादत करो और अच्छे काम करो। चार चीज़ें कही हैं, रुकू, फिर सजदा, फिर अल्लाह की इबादत और फिर अच्छे काम। ये भी एक बड़ी फलसफी तरतीब है। रुकू जब आप आंखों से देखते हो रुकू तो इंसान आधा झुक गया है, जब आप सजदा देखते हो तो वो पूरा झुक गया है, यही बात है ना। तो एक तरह से एक तरतीब है कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि अपने अल्लाह ताला के सामने जब हम अपने आप को पेश करते हैं तो उसमें भी मराहिल होते हैं, यानी इंसान 100% एकदम से नहीं पहुंच जाता, उसको लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ जाओगे। तो नमाज में भी वो मराहिल सिखा दिए, पहले इंसान खड़ा है, फिर आधा झुका, फिर पूरा झुका। और इसी तरह हम जब अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं तो इसमें स्टेजेस होती हैं और हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं। और ये यही दर्स नमाज की हरकात में से बहुत सारे दुरूस में से एक दर्स ये भी है। तो ये तो आ गया इरकाउ वस्जुदू, लेकिन हम अगर रुकू और सजदे को मिलाएं तो यही तो असल इबादत है नमाज। लेकिन फिर उसके बाद किस चीज़ का जिक्र किया, वअबुदू रब्बकुम, लेकिन पहली दो बातें तो पहले ही इबादत थी, तो फिर इसके बाद इबादत का जिक्र करने की क्या हिकमत हो सकती है। उसके बहुत सारे जवाहिर में से एक छोटा सा मोती ये है कि यहां पर अल्लाह कह रहे हैं कि अब जो तुमने सबसे आला इबादत कर ली ना, अब तुम बाकी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए तैयार हो, अब इबादत शुरू होगी। रुकू और सजदा असल इबादत के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है, यानी नमाज का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, जाके मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैं वापस ऑफिस के काम पे लग गया, ऑफिस के काम पे किसी की गीबत हो रही है, ऑफिस के काम पे को कह रहा है जी आप बस ये कह दें कि डेडलाइन परसों है, हम सबको पता है आज है, लेकिन आप डेट चेंज कर दें मेरे लिए प्लीज, अब बस भेज दें, खैर है। किसी की कॉल आ रही है उनको बता दो मैं ऑफिस में नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं है। ये क्या है, ये अल्लाह ताला से इबादत नहीं है। इबादत का मकसद है कि जो हिदायत, जैसे नमाज में अल्लाह ने हिदायत दी है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला हिदायत देते हैं रुकू में जाओ, रुकू में जाते हैं, अल्लाह कहते हैं पूरे गिर जाओ, पूरे गिर जाते हैं, जब खड़े होने का वक्त तो खड़े होने का वक्त, हर हरकत को कंट्रोल किया जा रहा है, आंखें कहाँ जानी है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, सलाम किस तरफ करना है, पहले किधर करना है, पहले किधर करना है कंट्रोल किया जा रहा है, आपके अल्फाज को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी आप मुजाहरा करते हैं कि अल्लाह जो जो इंस्ट्रक्शन जो हुक्म मुझे देगा 100% मैं उस पर अमल करूंगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मैं करूंगा, मैं पूरी तरह अल्लाह ताला की इताअत करने के लायक हूं, मैं उसकी सलाहियत रखता हूं। और सब इकट्ठे वो हम करते हैं जमात से, यानी हम में से किसी में फर्क नहीं है, जो अल्लाह कह रहा है वो हम एग्जैक्टली कर रहे हैं, अपने जिस्म को हम सरेंडर कर देते हैं। आपको कॉल आ रही है उसके दरमियान, आपको आपका बॉस बुला रहा है, आपको कोई आपका फेवरेट मैच लगा हुआ है, आप खड़े हुए हो नमाज में, कोई आउट हो गया तो आप ये नहीं कहते ओए ओ यार अल्लाह अकबर, नहीं करता कोई भी, आप खड़े रहते हो नमाज में, आपकी ट्रेनिंग ऐसी है। तो नमाज क्या सिखा रही है कि अल्लाह ताला की जब इताअत होती है तो वो मुकम्मल होती है। अब जिंदगी में क्या होता है, कुछ मामलात में अल्लाह आपको कुछ ज्यादा छुट्टी देता है, आप खड़े हो, कुछ मामलात में अल्लाह ने ज्यादा मुतालबा किया है जैसे क्या है रुकू, कुछ मामलात में अल्लाह ने बहुत ज्यादा मुतालबा किया है जैसे सजदा, आंखें कुछ अब सजदा करता है ना इंसान, लेकिन जब इंसान क़याम में खड़ा होता है ना तो अल्लाह ने हमारी आंखें ऐसी नहीं बनाई कि अगर आपने जायनमाज बिछाई हुई है तो आपको सिर्फ ये मुरब्बा नजर आ रहा है, अगर कोई बच्चा भागता हुआ जाएगा तो आपको वो भी नजर आ जाएगा, ऐसी बात है ना। लेकिन जब आप रुकू करेंगे तो आपके आपके नजर के दायरे में कमी हुई कि नहीं, कमी आ गई ना, जब सजदे में गए तो नजर कहां तक जाती है, बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल आपका दायरा बंद हो जाता है। कुछ मामलात में औरों का अमल दखल है हमारी इबादत में और हमारी इताअत में, और लोग भी शामिल आ जाते हैं, लेकिन आपको उसको बर्दाश्त करके फोकस करना पड़ेगा, कुछ मामलात ज्यादा ज्यादा फोकस, और कुछ मामलात में किसी का कोई अमल दखल नहीं, वो बस आप खुद करो। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अल्लाह ताला के लिए पढ़ा रहा हूं तो ये इबादत है कि नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ सीख रहे हो, ये भी इबादत है कि नहीं, लेकिन इस इबादत में एक सोशल एलिमेंट भी है, हंसी मजाक भी है, हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कोई कोई तारीफ भी कर दे, कोई फोटोज भी खींच ले, कुछ और भी कर ले, यह है कि नहीं? तो इसमें हमारे फोकस में इधर उधर बात हो सकती है कि नहीं? हो तो सकती है ना। तो इस फोकस के इधर उधर होने के बावजूद इंसान अपने आप को सीधा रखे, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, लेकिन इंसान अपने आप को दोबारा फोकस पर लाता रहे, यही बात है ना। इसके मुकाबले में अगर जब हम नमाज पढ़ते हैं या किरात करते हैं कुरान की घर में बैठे हुए, या तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उसमें किसी और का अमल दखल है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला हमें तैयार कर रहा है कि हर तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना है। अगर अल्लाह ताला चाहते ना कि हम दुनिया को छोड़ के बस अल्लाह की इबादत करें, तो शायद जिस तरह बुद्धिस्ट होते हैं या हिंदू होते हैं या और मजाहब होते हैं, जो आंखें बंद करके पहाड़ पे कहीं जाके बाकी सबसे दूर होके 6-6 घंटे बैठे रहते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। लोगों ने तो मुझसे आके ये भी पूछा है कि नमाज में आंखें बंद करके नमाज पढ़ने तो उजरा कॉन्सेंट्रेशन आसान नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब आंखें खोल के नमाज पढ़ते हैं तो आपका छोटा बच्चा है वो नीचे से आके आपको ऐसे है, आप नमाज पढ़ रहे हो, जिसे आपको घूर रहे हैं आप नमाज, और ये ऐसा नहीं कर सकते कहीं किसी दूर कोने में किसी पहाड़ी पे जाके कहीं जाके, या अगर अल्लाह अगर आप इजाजत दे दो मैं गाड़ी में जाके दरवाजे बंद करके सारे गाड़ी के फिर मैं नमाज पढ़ा करूं, या नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा के मैं नमाज पढ़ा करूं तब बाकी बाहर की आवाज ना। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया, कोई मछेरा था उसने किश्ती पे खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई किसान है उसने खेत में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई मजदूर है उसने मजदूरी में नमाज, कोई जंग के मैदान में उसने जंग के मैदान में नमाज पढ़नी है। यानी नमाज का जो ये सिलसिला है वो दुनिया को छोड़ के है कि दुनिया के साथ ही चल रहा है? दुनिया के साथ, मैं जब मैं न्यूयॉर्क में होता था, न्यूयॉर्क में क्योंकि रियल एस्टेट बहुत महंगी है तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट खोलना हो गया न्यूयॉर्क सिटी में तो वो तो ख्वाबों की बात है, बहुत ही महंगा है। तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स बनाए हुए, वो ठेला लेके वो चलते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है कि इस सड़क के इस कोने पे आपके पास लाइसेंस है, यहाँ पे आप बेच सकते हो। वो बहुत सारे हलाल वेंडर्स बने हुए हैं जगह जगह, हलाल हॉट डॉग्स, हलाल चिकन एंड राइस वगैरह वगैरह, तो वो सड़क पे लाखों की लोग में लोग गुजर रहे हैं, लोग उससे खरीद रहे हैं। तो नमाज का टाइम आता है तो वो क्या करता है बेचने वाला, वहीं पे उसने फुटपाथ पे जायनमाज लगाई, आगे गैस की टंकी रखी, वहीं वो खड़ा नमाज पढ़ रहा है टाइम स्क्वायर के दरमियान में, इधर से उधर लोग गुजर रहे हैं और वो वहां खड़ा नमाज पढ़ रहा है। अब शोर है, शोर तो है, गाना बजाना है, बिल्कुल है, गाड़ियों की आवाज है, बिल्कुल है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई बेहूदा बातें भी कर रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है, लोग ट्रेन स्टेशन में नमाज पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमें इस दुनिया का सामना करना है और फिर भी इबादत करनी है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है हमें। तो जब ये कहा है ना वअबुदू रब्बकुम, अपने रब को मद्देनजर रखो, उसकी इबादत करो, ठीक है दुनिया का तो तुम्हें सामना करना ही है। तो ये ज़हनियत अल्लाह ताला ने हमारे दिलों से हमारे दिमाग से निकाल दी कि नहीं जी मुझे दुनिया से हट के मुझे दीन की खिदमत करनी है। ओ इंसान, हमारा दीन क्या है कि हम दुनिया का सामना करते हैं और दुनिया का सामना करते हुए हम दीन की खिदमत करते हैं, दुनिया से भाग के नहीं, दुनिया से हट के नहीं, दुनिया में रहते हुए दुनिया को एंगेज करते हुए। ये दीन तिजारत में गया, ये दीन सफर में लेके हम जाते हैं, ये दीन हम हर दुनिया के हर शोबे में हम इस दीन को साथ लेके जाते हैं, हम दुनिया के शोबों से भागते नहीं, उनको फेस करते हैं। लेकिन ये सब है कमिटमेंट हमारी अल्लाह ताला के साथ। उसके बाद एक आखिरी तरतीब में डाला वफ़ालुल खैर, और खैर किया करो, अल खैर करो। तो सवाल पैदा होता है कि पहले कहा था रुकू करो, वो खैर नहीं है? फिर कहा था सजदा करो, वो भी तो खैर है? फिर कहा था इबादत करो अपने रब की, वो भी तो खैर है? और अब क्या क्या कह रहे हैं? अल खैर करो, खैर अल खैर करो। तो इससे मुराद ये है कि इन सब के बाद एक और मरहला भी है, और वो है सबसे बेहतरीन करने का काम, सबसे बेहतर अल खैर। खैर अरबी में कहते हैं अच्छे काम को, अल खैर कहते हैं बेहतरीन काम को, शर कहते हैं बुरे काम को, अशर कहते हैं सबसे बदतरीन काम को। इसी तरह अस्मा तफदील में होता है अहसन बेहतर है, और अल अहसन बेहतरीन है, अकबर ज्यादा बड़ा है, और अल अकबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहां पर अल खैर से सबसे बेहतरीन काम करो, और सबसे बेहतरीन में बहुत सारे उलमा ने इस पर बहुत तदब्बुर किया कि ये क्या बात कही जा रही है, और उसमें बहुत सारी राय है। जो एक राय मेरे दिल को लगती है औरों का मैं इनकार नहीं करता, वो ये भी है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत खल्क दोनों को मिलाकर बेहतरीन, यानी दोनों तरफ, एक तरफ आप एक नज़र आपकी इंसानियत की भलाई की तरफ है, उसमें दावत का भी काम है, उसमें इंसान की इस्लाह का भी काम है, उसमें फलाह का भी काम है, रिलीफ का भी काम है, तामीर का भी काम है, वो सारी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की इबादत भी है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो एक क्लाइमैक्स तक आ गई ये बात, इरकाउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह तक पहुँच जाओ। हुवा अल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िर वमिनकुम मुमिन, उसने तुम्हें बनाया और तुम में से काफिर भी हैं और तुम में से मोमिन भी हैं। और ये असल में एक दो हकीकतें हैं, दो मुतजाद हकीकतें हैं जो कुरान ने बयान की हैं। इंसान की असल है नूर, इंसान की असल है नूर, लेकिन इंसान की तारीख में असल ट्रेजेडी है कि अक्सरियत किस तरफ गई, कुफर की तरफ। इंसान की तारीख में हकीकत में, यानी सलाहियत एक और चीज़ होती है और जो हुआ हकीकत में वो और चीज़ होती है। जैसे कोई टीचर है क्लास में, उसके सामने बहुत ही बेहतरीन जहनीयत के बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, वो सारे फुल मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे आधे से ज़्यादा फेल होते हैं। वो फेल इसलिए नहीं होते कि उनका जहन नहीं है, इसलिए नहीं होते उनकी सलाहियत नहीं है, उनके अंदर कुव्वत इरादा नहीं थी, सीरियसनेस नहीं थी, मेहनत का जज्बा नहीं था, सुस्ती थी, दिल नहीं था। टैलेंट तो है लेकिन सुस्ती भी है साथ में, तो टैलेंट का कोई फायदा नहीं होता जब सुस्ती हो साथ में। इसी तरह इंसानियत को सलाहियत तो दी गई हिदायत पर रहने की, हिदायत पर जीने की, लेकिन हमने इस मामले में सुस्ती दिखाई, कुव्वत इरादा नहीं दिखाई। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो अक्सरियत है उसका जिक्र पहले किया और कहा फमिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन। और ये हकीकत भी थी उस वक्त की कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, उसने तुम सबको बनाया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑडियंस में अक्सरियत किन की थी, कुफार की या अहले ईमान की? कुफार की। फमिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, हमने किताब विरासत में दी उन लोगों को जिनको हमने खास चुना था हमारे बंदों में से। فمنهم ظالم لنفسه, तो जिन उम्मतों को चुना, जिन अहले ईमान को चुना, उनमें से भी बाद में, यानी मुसलमान होने के बाद भी ऐसे निकले जिन्होंने अपने साथ जुल्म किया। ظالم لنفسه, यानी मुसलमान होने के बावजूद गुनाहगार होना, उनका पहले जिक्र। फिर कहा منهم مقتصد, और उनमें से जो वो हैं जो एतदाल की राह लेते हैं, दरमियानी राह। मुक्तसिद, मुक्तसिद इसको भी कहते हैं जो इरादे का पक्का हो, मुक्तसिद उसको भी कहते हैं जो अदल व इंसाफ करे। अब अंदाज़ा करें, गुनाह करने वाले ज़्यादा हैं या इंसाफ करने वाले ज़्यादा हैं? गुनाह करने वाले ज़्यादा, उससे कम कौन? इंसाफ करने वाले। और फिर आखिर में वमिनहुम साबिकुन बिलखैरात, और उनमें से वो भी हैं जो खैर के अच्छे कामों में औरों से आके निकल जाते हैं, जो खुद ही से मोटिवेटेड होते हैं, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे ना, मिनहुम साबिकुन बिलखैरात, वो सबसे कम तादाद में हैं। तो ज्यादा से कम की तरफ एक सीक्वेंस जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी। दो जुर्म हैं जिसमें अल्लाह ताला ने एक तरतीब, एक के लिए एक तरतीब, दूसरे के लिए उसकी मुतजाद तरतीब इस्तेमाल की है। चोर के बारे में कहा है कि मर्द चोर और औरत चोर, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तअउ अयदीहुमा, उनका हाथ काटो, वस्सारिकु वस्सारिकतु, ठीक है। सूरतुन नूर में अल्लाह ताला ने जिना के बारे में कहा है वज़ानियतु वज़ानी, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द। तो जब चोरी की बात की तो किसका जिक्र पहले है? मर्द का, फिर औरत का। और जब जिना की बात की तो किसका जिक्र पहले है? औरत का और फिर मर्द का। इस पर हमारे उलमा के बहुत सारे तबसरे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसमें कोई रिसर्च भी करूं इन दो जुर्मों के बारे में। तो मेरी मुलाकात हुई एक दफा एक क्रिमिनोलॉजिस्ट से, जो क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ते हैं, क्राइम को स्टडी करते हैं, जुर्म को स्टडी करते हैं, उसकी डेटा एनालिसिस करते हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थी, उन्होंने अमेरिका में क्राइम को पढ़ा था पिछले सत्तर साल का डेटा क्राइम का, कि मुख्तलिफ किस्म के क्राइम जैसे कार जैकिंग है या होम इन्वेजन है या किसी ने जो है वो पिक पॉकेटिंग है, किसी ने जो जेब कतराना होता है वो है, फिर प्रोस्टिट्यूशन है, इस तरह के जुर्म ना। तो वो एक सेमिनार में थी मेरे, वहां उनसे मुलाकात हुई थी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और जो अकवाल हैं उलमा के मैं वो शेयर कर रहा था। आज मैं उनकी बात आपसे शेयर करता हूँ। सेमिनार के पास वो मेरे पास आती है, मुझे अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में, वो टेक्स्ट बुक खोल के उन्होंने मुझे दिखाई अमेरिकन क्राइम स्टेटिस्टिक्स की, और कहती हैं कि जो रॉबरी और स्टीलिंग, होम इन्वेजन, इस किस्म के स्टीलिंग वाले, चोरी वाले काम, उसमें 98% मर्द हैं, 98% मर्द हैं और 2% औरतें। और उसमें भी लोगों ने बहुत एनालिसिस किया है ऐसा क्यों है, वो क्यों है, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा है, फिजिकल हार्म का रिस्क ज्यादा है और मेन जो है वो फिजिकल रिस्क ज्यादा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूशन से मुतालिक केसेस में 96-97% कौन है, फीमेल्स हैं जो अरेस्ट होती हैं, जिनको पकड़ा जाता है, वह जानियत हो वो जानी। हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को और औरत को दो मुख्तलिफ किस्म की ताकतें दी हैं, इंसान को, मर्द को फिजिकल ताकत दी है और औरत को जज्बाती ताकत दी है, वो साइकोलॉजिकली उसको पावर दी है, कंट्रोल करने की पावर दी है, सड्यूस करने की पावर दी है, अट्रैक्ट करने की पावर दी है। तो इन दोनों पावर्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादा सलाहियत है उसका वो ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो दोनों के पास दो तरह की सलाहियत हो सकती है, बट दिस इज अ स्टेटिस्टिकल रियालिटी। वसारिकु वसारिकतु वज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा मिया जल्दा। ओके,
1: सब्सक्राइब नाउ टू द दगीना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: यहां पर इस मिसाल के लिए आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, लेकिन ये मेरे नज़दीक ये इस किस्म की मिसालें होती हैं जो जब मैं पहले पढ़ रहा था ना, तो इनसे मैं सबसे ज्यादा जो मुतासर होता था इन मिसालों से होता था कि ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता।
2: الحديث السادس والثلاثون عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي فأقع ساجدا مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجه، وفي رواية أخرى للبخاري زيادة هي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ضرة.
3: Hadith 36. On the authority of Anas, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, the believers will gather together on the day of resurrection and will say, should we not ask someone to intercede for us with our Lord? So they will come to Adam and will say, you are the father of mankind. Allah created you with His hand, and He made His angels bow down to you, and He taught you the names of everything. So intercede for us with your Lord, so that He may give us relief from this place where we are. And He will say, I am not in a position to do that. And He will mention His wrongdoing and will feel ashamed and will say, go to Noah, for he is the first messenger that Allah sent to the inhabitants of the earth. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention his having requested something of his Lord about which he had no proper knowledge. And he will feel ashamed and will say, go to the friend of the merciful. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Moses, a servant to whom Allah talked and to whom he gave the Torah. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention the taking of a life other than for a life. And he will feel ashamed in the sight of his Lord and will say, go to Jesus, Allah's servant and messenger, Allah's word and spirit. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Muhammad, may the blessings and peace of Allah be upon him, a servant to whom Allah has forgiven all his wrongdoing, past and future. So they will come to me, and I shall set forth to ask permission to come to my Lord, and permission will be given. And when I shall see my Lord, I shall prostrate myself. He will leave me thus for such time as it pleases him. Then it will be said to me, raise your head, ask and it will be granted. Speak and it will be heard. Intercede and your intercession will be accepted. So I shall raise my head and praise him with a form of praise that he will teach me. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return to him. And when I shall see my Lord, I shall bow down as before. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return for a third time, then a fourth, and I shall say, there remains in hellfire only those whom the Quran has confined and who must be there for eternity. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, At-Tirmidhi and Ibn Majah. Another version by Al-Bukhari adds, the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a barley corn. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a grain of wheat. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing an atom.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: Rabiul Awal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
8: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
9: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
10: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
11: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
12: When life gets busy
13: and when family life gets complicated,
12: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
13: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
12: A show bringing real conversation, practical advice.
13: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: Hamare ulama kehte hain ki Allah Taala ne mard ko aur aurat ko do mukhtalif qisam ki taqatein di hain. Insaan ko mard ko physical taqat di hai aur aurat ko jazbati taqat di hai. Wo psychologically usko power di hai, control karne ki power di hai, seduce karne ki power di hai, attract karne ki power di hai. तो इन दोनों पावर्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादा सलाहियत है उसका वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है. वैसे तो दोनों के पास दो तरह की सलाहियत हो सकती है, बट दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल रियलिटी. वसारिकु वसारिकतु वज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिद मिन्हुमा मिअ जल्दा. ओके,

0: डायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.